तब कत मूंड लुकई है। हुण तेरा सोहना मुख है, सोहनी रसना कुदरत ने दिती है नाम जपण वास्ते, ते जे कदे तू पशु दी जून पै गया ते फेर पाई। चार पाव दोए सिंह गोंग मुख तब कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेंगा पर है तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल

एक अनक लख बरिया अनथोर नहीं जह जाता। चंचल मत चंचल मत बारिश बपुरे की सर्प अग्न कर मेल माता पिता कंठ लाए राखे।

मर जाए लोग राजा तासों टूटी क्यों बने जाके जी बनाओ सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच दीपक प्रदास कटे प्रीत ना पतंग की उस पास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश आस कटे ना विहंग की कटाकन को

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू

जो तो करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरण सर्व हम अनाथ ना फकन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आला दे किस दिन आम की पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

मज्जन होत साधु तुरे आवन जानू रे चित पाई जन मरन के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सच पाया जन मानस सब बनिहार।

गुरु की साथ संगत आओ। साहिब गुरु रामदास पातशाह दे उच्चारण कीती हुई शब्द दे रूप विच पड़ताल, हर गुण गावो जगदीश राग कांडा। और शब्द धन साहिब से गुरु रामदास पातशाह जी का।

तो भारत की मुश्किल हो जाए ऐसा, तो भारत की मुश्किल हो जाए ऐसा। बताओ अगर कोई धर्मात्मा हो, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे दसो भाई ऐसा कोई है? बताओ अगर कोई धर्मात्मा हो, जो इंसान के जामे में परमात्मा हो, ना जिसको गुनाहों का धब्बा लगा हो, खुशी से जो अपने वतन पे फिदा हो, खुशी से जो अपने वतन पे फिदा हो। सारिया ने सिर नीवे कर ले, कोई जवाब ना मिले या। ते पास गोविंद राय जी बैठे सन, कहन लगे पिता जी मैं भी कुछ अर्ज करा। कहा गोविंद राय दस्ते बस्ता, सुनो ऐ पिता महाराज की वला, सिवा आपके कौन धर्मात्मा है? अगर कोई

0: गला खुद कटाने को बस आप ही है।
1: दसम पिता दी ए गल सुन के गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने अपनी कुर्बानी दिती ते फिर क्या गए ए सारे हिंदुस्तान वास्ते साहबा ने अपनी कुर्बानी दिती। तिलक जंजू राखा प्रवतांका कीनो बड़ो कलू में साका ते फिर बड़ा सुंदर करके लिखिया गया है।

जो सास समृद्धि अति अप्रचलित राग जिसन गुनीन सज्जन चारू पेशी कहते ने अप्रचलित राग है लेकिन आप संगतां दी कृपा नाल गुरु सच्चे पाश दी रहमत नाल आप दे दास ने इस नूं गाया है बड़ा ही अप्रचलित राग है बहुत ही कोमल राग है मन नूं पौंदा है मन नूं चंगा लगता है एक बार इसका अंतरा स्थाई सरवण करो फिर दूसरा शब्द जी।

अपना परना मोढ़े ते मारिया। गंगा घाट इशनान करन वास्ते तुर पए ने जदू स्वामी रामानंद गंगा घाट पहुंचे

समा बीते। स्वामी रामानंद एक दिन इशनान करके अपने डेरे आए, ए मूर्ति पूजा नहीं सन कर दे। कमरे दा बुआ बंद करके, अखां बंद करके, मन करके अपने ठाकुर नू इशनान कराया कर दे सन। और एक दिन इशनान करा रहे ने ठाकुर नू, कपड़े पवाए, सिर ते मुकट रखे, अचानक ख्याल आया मना, सिर ते मुकट पा दिता है, हार पान दा ते ख्याल ही नहीं रहा। हार छोटा है, मुकट तू पह नहीं सकदा, मुकट लावां तां बेअदबी हुंदी है। जिवें असी किसे दे गल हार पाना होवे, हार छोटा होवे, पग ला के गल विच हार नहीं पाईदा। इसे तरह स्वामी जी सोची पै गए, हार छोटा है, मुकट तू पह नहीं सकदा, जे हार ना पावा पूजा पूरी नहीं होंदी। इन्ने नू कन्ना विच एक आवाज पई, स्वामी जी हार छोटा है, गंढ खोल के हार दी, हार गल विच पा के फिर गंढ बन दे। बिरती खुल गई, स्वामी जी बाहर आए, बुआ खोलिया, बार की देखते नहीं, भगत कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे, ओए तू कौन है जिन्ने मेरे मन की गल जान ली? ते कबीर साहब कहंदे ने, स्वामी जी मैं आप दा सेवक कबीर हां, अमृत वेले गंगा दिया पौड़िया ते सुता सा, ता तुसी कहा सी उठ राम के राम को, ओदू दा आप दा सेवक बन गया। ते स्वामी रामानंद दिया अखां विच अथरू आ गए, मन पार आया, उन्हां कबीर नू बाहों फड़ के अपने गल नाल लगा लिया, ते नाले कहंदे ने, ओए कबीर तू हुण सेवक किथे, तू ते मेरे तू भी अगे लंघ गए, जिन्हें मन दी गल जान ली ओ सेवक किथे। और सचमुच राम कबीरे भेद ना पाई, ए अमृत वेले जागण दा फल के कबीर विच ते राम विच, उस वाहिगुरु विच।

0: थाक दे सौ खाते में सो तुम थाक नहीं दिखता
1: तनिया मैं उन्हें दिखता सच आखते हो हां तनिया सच आखता खाकर जी तुम मैनू दिखते हो इसका मतलब तुम तलोचन भी दिखते हो नहीं तनिया मैं भैड़िया अखा वाले नहीं दिखता जिन्हों का मन होर भुख होर हो मैं नहीं उन्होंने दिखता फिर भगवान जे तू मेरे को रहना है तो फिर तुम तरलोचन भी दर्शन देने पैणगे तनिया नहीं यह झूठा है फरेबी है मकार है हेरा फेरी करता है मेरे ना से नहीं प्रभु जे ए ना हुंदा तो मैनू तेरे दीदार निश्चय होने हुणे हुण भगवान नू तन्ने दे कारण करके तरलोचन नू भी दर्शन देने पए तरलोचन का भी दर्जा भगतां विच आ गया किहदे करके किरती ने संगत की संगत का दर्जा की होया फिर तन्ने ने मंगिया कि ऐना कुछ मंगया कोई भी संसारी ऐना कुछ मंग नहीं सकया एक ताजन तुरी चंगेरी करके कहे चंगी जंत ना ले दे मंगी पातशाह घोड़ी वह होवे जिहड़ी किसे कोल होवे बिस्तरा ऐदां दा होवे जिहड़ा बादशाह नूं नसीब ना होवे इस्त्री एडी खूबसूरत होवे जद रोटी लैके आवे ते मेरा थके मलक जावे देख के

मैं मां साधु संग की सुनो मेरे मीता। आओ आखिरी शब्द सत श्री अकाल दे जकारे, फिर अगले समय विच अगले कीर्तन दीवाना विच जिस तरह भी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे शब्दां विचों विचित्र नाटक है, सर्वलोक ग्रंथ है, दशम ग्रंथ की बाणी, रागां दे गुलदस्ते जां तराने, जो भी आप हुक्म करोगे श्रवण करावांगे। आओ अज आखिरी शब्द समा हो गया है, सत श्री अकाल दे जकारे। जिनी संगत बैठी है सारिया ने गज वज के चढ़दी कला का जो जकारा साडा प्रतीक है, चढ़दी कला का प्रतीक। सतगुरां ने सानू दो नारे बख्शिश किए हैं, एक नारा आप जी ने श्रवण कर लिया है फतेह का नारा, वह किस तरह गजाना है, तो दूसरा है सत श्री अकाल का जकारा चढ़दी कला च छड़ना है। तो आओ दोबारा कहण की जरूरत ना पवे कि उच्ची आवाज विच गूंज पै जावे। तो आओ चढ़दी कला च सत फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण पारा, ये शब्द आप जी ने पिछले कीर्तना विच पिछले साल भी कई बार श्रवण किया है। तो आओ जोश विच आके आनंद विच आके सारे हाजरी लवाओ। इस तों बाद कीर्तन की समाप्ति है, बड़े बड़े सुंदर जथे सारी रात कीर्तन दरबार सजना है, रैन सबाई है, आप जी ने सारी रात हाजरी भरनी है। ते ए जागना जागण नीका हर कीर्तन में जागना। तो आओ सत्संग जी हाजरी।

जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र गोद का निग मान रही गुरु रूप साध संगत जीओ सनिमर फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का ही कीर्तन दरबार जो नवे साल की आमद से करवाया जा रहा है, इस विच रूहानियत दे सोमे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर के हजूरी रागी जत्थे आप संगतां नूं गुरबाणी

अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहिन चंदन सुगंध ग्रह सोहिन चंदन सुगंध

बेशक दुनिया दे सुख प्राप्त होवन, सारी सृष्टि दा राज भी प्राप्त हो जावे, बिना नाम तो मन शांत नहीं, बिना नाम तो सुख नहीं। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। नाम दे विच ही सारे सुख हन, नाम दे विच ही सारे पदार्थ हन। सुखी कौन है जो जप रहा श्री वाहिगुरु। हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन के सुंदर सेज होवे अनेकां सुख, किसे भी सुख की कमी ना होवे। महल माड़ियां भी सुंदर होन, सुगंधियां भी कपड़ियां नूं लगियां होन, मन वांछित फल मानदा होवे, मन इच्छे सुख मानदा, किस ना है भी सूरे, कोई फिक्र फाका ना होवे। पर हजूर कहंदे जे परमेश्वर दा नाम नहीं चेते तां ऐसे मनुख नूं समझ लो जिस तरह विष्टा दा कीड़ा किसे कम नहीं आउंदा, इसे तरह ही ओ मनुख है। सो प्रभ चित ना आवे, जे नाम चेते नहीं है तां हजूर कहंदे सो प्रभ चित ना आवे विष्टा के कीड़े। कोई बेशक उच्ची कुल दा भी होवे, सुंदर भी होवे, चतुर भी होवे, बड़िया ज्ञान दियां बातां भी करता होवे, जे मन करके गुरु चरणा दी प्रीति नहीं तां हजूर कहंदे ओ तां एक मरे हुए पशु दे समान है। क्योंकि दरगाह विच तां अग्गे करनी कीरत वाची है, तेरे मन विच कितना को गुरु दा प्यार है, कितना को सत्कार है, अग्गे तां ए वाचिया जाना। कोई चार अखर घट पढ़ लवे, कोई वध पढ़ लवे, पर अगे ए नहीं पुछा जाना भाई तू कितनी को पढ़ाई कीती है, कितनी को माया कठी कीती है। अगे तो भाई करनी कीरत वाची है, की करनी कमाई कीती, चौवी घंटियां विचों कितना कुछ समा तू परमेश्वर दी बंदगी विच मन करके बतीत कीता। आ मामूली दुकानदार नूं वेखिए सवेर तो शाम तक हिसाब ला लैंदा है अज की कमाया है, की गवाया है। मनुख दे 24,000 श्वास बिना जपन तो रोज दे व्यर्थ जा रहे हैं, इसने कदी ख्याल नहीं किया। ए चेता कराउंदे हैं जपन वाले, ए चेता कराउंदे हैं महापुरख, ते जिन्हां ने उन्हां दे बचना नूं पले बन लिया फिर लोक सुखी पर लोक सुहेले। कबीर जी ने वेखिया एक सेठ बैठा है दुकान ते, बड़े नौकर चाकर हुक्म दी उड़ीक विच खड़ोते हैं। मन च सोचिया भाई इस नूं कदी सत संगत विच नहीं वेखिया, ते होवे ना तां इस नूं बेनती करिए भाई सत संगत विच आया करो। कबीर जी जा खड़ोते ते फिर ए बड़े हंकार नाल कहन लगा नौकर नूं भाई दियो कुछ ते तोरो इस नूं, क्योंकि हजूर कहंदे ना माया तारी अन्ना बोला, गुर शब्द ना सुने बो रोल गचोला। आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लग मात, आप तो उत्ते किसे नूं समझदा ही नहीं। कबीर जी जा खड़ोते ए भिखारी समझ के अपने नौकरां नूं कह रहे है भाई कुछ इस नूं दियो ते तोरो। कबीर जी कहन लगे सेठ जी मैं मंगता नहीं, मैं कुछ मंगण लई नहीं आया। आख्या जे तू मंगता नहीं तां व्यापारी है। आख्या मैं व्यापारी भी नहीं, जिस वस्तु दे तुसी वणज करन वाले हो उसका मैं व्यापारी भी नहीं हां। ते आख्या फिर तू कौन है, की चाहुंदा है,
ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਆਖਿਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸੇਠ ਇਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲੇ। ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ।

की बिगड़े बेनती करी चलते हाँ कबीर जी फिर जा खड़ोते ते कहन लगे शेठ जी सत संगत विच आया करो ता हुण बड़े हंकार दे विच आके अपने नौकरां नूं कहन लगा भई एक बंदा तुहाडे कोल नहीं मुड़दा गाकी दा टाइम है इथे आके खड़े जांदा सत संगत विच आया करो इस नूं धक्के मार के परे छड के आओ। कबीर जी नूं धक्के पए पर बुरा नहीं मनाया आख्या इस दे भागी ऐसे हम। कुछ दिन बीते कबीर जी फिर इथों दी लंघे ते मन विच दया आ गई मन विच ख्याल आ गया भई कोई गल नहीं इन्हां ने धक्के मारे हन हो सकदा है ए सत संगत विच जुड़ जावे एदा भला हो जावे इनू मनुच्छा जन्म दा पता नहीं है कितनी अमोलक दात है। उचारण करो श्री वाहिगुरु। जिवें कोई बिच्छू डुब रहा सी ना पानी दे विच महापुरखां ने उसनू कढ़ना चाहिया बिच्छू नू ते बिच्छू ने डंग मार दिता हथ कंब गया फिर डिग पिया फिर कढ़िया फिर उसने डंग मारिया हथ कंब गया महापुरशां दा फिर डिग पिया ते जदों फिर कढ़न लगे ना ते कोल खड़ोता सेवक कहिंदा महाराज इस नू डुबन दिओ तुसी इहदा भला सोचदे हो इह तुहानू डंग मारदा है। तां महापुरख कहिण लगे भाई इह डंग क्यों मारदा है इह क्यों दसदा है। आख्या जी इसका सुभाव है इसका सुभाव ही ऐसा है। तो महापुरख कहन लगे जे एक कीड़ा नहीं अपना सुभाव त्यागदा ते मैं अपना सुभाव दा किवें त्याग कर दिया। उचारण करो श्री वाहिगुरु। मैं अपना परोपकारी सुभाव क्यों छड़ देवां। कबीर जी अज जदों तीसरी वेरा लंघे ते कहन लगे कोई नहीं धक्के मारे हन कोई गल नहीं इसका भला हो जावे ते फिर जा खड़ोते ते आवाज ओ सच दी आवाज कन्ना ते पाई आख्या सेठ जी सत संगत विच आया करो। हुण सेठ ने अपने नौकरां वल घूर के अखां लाल करके आख्या तुहाडे कोल इक्को बंदा नहीं मुड़दा अज इसनूं ऐसी मार दिओ कि इत्थे आउण जोगा ही ना रहे। कबीर जी कले सन सारे नौकर उन्हां नूं पै गए लहू लुहान कर दिता। कबीर जी जदों उठन लगे ना ते कहन लगे ओए सेठ तेरी तां उम्र ही थोड़ी रह गई है क्योंकि जेड़े महापुरखां नूं गुरमुखां नूं भले पुरशां नूं सताउंदे हन ओ एवें समझ लैण जिवें अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे। जेड़े जुलम करदे हन संतां महापुरखां भगतां दे उपर ओ कलंकी भी हो जांदे हन और नष्ट भी हो जांदे हन और फिर उनां दा नाम माड़ियां अखरां विच पुकारिया जांदा है। जिवें रोज तुसी कहंदे हो हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया उन्हां दा नाम दुष्ट करके पुकारिया जांदा है जो भगतां नूं सताउंदे हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। कबीर जी आ गए इधर सेठ समा अपना व्यर्थ गुवा के गुजर गया काफी समा बीतन दे बाद कबीर जी जा रहे हन सैर करते हुए ते की वेख्या एक बड़ा वड्डा कट होया हुआ है। आख्या की है किसे ने दस्या जी बैल बेहोश होके डिग पिया क्योंकि उदे उपर भार बहुत लद्या होया सी इतना भार खिंच नहीं सकिया ते बेहोश होके डिग पिया। कबीर जी ने जदों जाके वेख्या अंतरदृष्टि दे नाल जदों जाके तकिया ते की वेखदे हन भई इह तां उसे ही शेर दी

निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपरस सगल निस्तार अष्टपदे मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर तरिया रूप न बेखे नेत्र साध की टैल संत संग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरे मन की वासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोखते रहत नानक कोट मदे को ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए पिन कर्म करत होवे न कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म कहू फल की इच्छा नहीं बाछे केवल भगत कीर्तन संग राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरे नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे भगौती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगौती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नितनीत मन तन अर्पय बिस्न प्रीत हर के चन हृदय बसावे नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोध है राम नाम आत्म में सोध है राम नाम सादस पीवे उस पंडित कह उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जोन नावे वेद पुराण सिमरत बूझे मूल सूक्ष्म में जाने अस्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए सब संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतारे पस प्रेत मुग्ध पाथर को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम काहू जुगत किते न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगे परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हरक तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी भिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरदाए साई जुगत नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ आपे करन करावन जोग प्रभ पावे सोई फुन होग पसर आप अनंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार

सब मतलब के झगड़े हैं। ब्राह्मण को गरूर कौम ने इतना डुबोया है कि मैं वड्डा वा, उसकी जनीयत पे उसका मुकद्दर रोया है। हुकूमत के तशद्दुद का जमाना खत्म करना है, हकीकत कह रही है ये अफसाना खत्म करना है। उठो, शहादत के लिए उन सरफरोशों की जरूरत है कि जिनके खून की एक बूंद

फिर हिम्मत आई, फिर डिसिप्लिन आया, फिर सहबी आई, अमृत दी दात बख्शी गरीब नवाज पातशाह ने, ते फिर भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, गुरु कृपा ने जातां दा मौका दित्तियां। ध्यान दिओ जे, ध्यान दिओ जे, एक जट लिया, एक खत्री लिया, एक चीवर लिया, एक चीम्बा लिया, एक नाई लिया, ते सारयां नूं इक्को बाटे विच पलाया ते आखिया।

तेरे कदम सेवा करन लई परपकार करन लई नहीं उठे ता तेरा जीवन अधूरा है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं, बिन संगत ऐसे समझो जैसे पशु ढोर। आख्या जिन्हां ने मनुष्या जन्म प्राप्त करके सत संगत नहीं कीती, नितनेम नहीं कीता, गुरु वाले नहीं बने, उन्हां नूं जीवंदियां पशुआं विच नहीं, उन्हां नूं मोयां होयां पशुआं विच गिणिया। पशु ढोर, ढोर कहंदे उन मरे हुए पशु नूं। आख्या ऐ मनुख पशु ने आके कितने काज सवारे, घास खा के अमृत रूपी दुध देंदा रहा ते जदों मर गया ता उस दियां हड्डियां कम आईयां, चबड़े दे जोड़े बने, होर कई समान बने, उस दे मास दी कई जानवरां दी खुराक बनिया, पर तू इथे आके केड़ा कम कीता, जे सिमरन नहीं कीता, नाम नहीं जपया, गुरु के निर्मल पाव विच नहीं रहा, ता तू मरे हुए पशु नालों ही माड़ा है। इसलिए बिन सत संगत दे।

रहे हैं, ये पल दी खबर नहीं, अहंकार कर रहे हैं। इसे हजूर कह दिया ना, तन जोबन का गर्भ ना कीजे, कागद ज्यों गल जाएगा। पता नहीं अगला पल किहो जिहा आ रहा है। तन गुरु नानक पातशाह संसार नूं तारदे होए एक नगर दे बाहर जा बैठे, वेख्या के सारे लोग बड़े खुशियां मना रहे हैं, ते झट बाद वेख्या के रोना पिटना पै गया है। इत्थे मर्दानिया आ हुणे तां खुशियां मना रहे सन, ते हुण वैन पै रहे हन जाके पता करके आ। मर्दाना जदों गया पता करके आया तां आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह, एक सेठ दे घर लड़का होया सी, बड़ी मुद्दत दे बाद औलाद होण दे कारण सारा नगर बड़ियां खुशियां मना रहा सी, पर अकाल पुरख वाहिगुरु दी नेत नाल ए लड़का शरीर छड गया, ते उहदे विंजोग विच हुण रो रहे हन। मर्दानिया ए संसार है ही दुख सुख दा एक नगर है, इत्थे पता नहीं लगदा। जिस तरह समुद्र विच बेड़ा जा रहा है, पता नहीं किथे तूफान आ जाना है, किथे शलां उठ पैनिया हन, किथे शांत हो जाना है। ए साडा जीवन भी ऐसा है, पर प्यारी साध संगत जो गुरु की बाणी सानू बख्शिश कर दी है कि भाई राज भाग दुनिया दे धन दौलत विच सुख नहीं हन, सुख तां हरि दे सिमरन विच है। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। जिन्हां हरि दा सिमरन कीता है सुखी तां ओ हन। कितने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह संसार तो चले गए हन, ते भाई नाम किन्हां दा रह गया जिन्हां ने हरि सिमरन कीता है। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन कि इस धरती ते इतने राजे महाराजे वजीर हो चुके हन, जदों असी एक कदम रखदे हां तां एक राजे दे सिर ते दूसरा वजीर दे सिर ते रखदे हां। इतने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह हो चुके हन, पर अज नाम किन्हां दा अमर है जिन्हां ने जपिया है श्री वाहिगुरु। तो इसलिए हजूर कहंदे हन भाई पता नहीं अगला पल किहो जिहा आवेगा, इसलिए जप जप के इना श्वासा नूं सफल कर लै। तेरा संसार ते आउणा भी ते संसार तो जाना भी तनता दे योग।